0: अहिले बिहानको 6 बज्यो
1: यस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
3: ब्रेक ब्रेक ब्रेक टाइम

0: अहिले बिहानको 8 बज्यो।
1: इस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: ब्रेक ब्रेक ब्रेक टाइम।

1 सयका सम्मानित बजरंग स्टील को टीएमटी शर्ट आई बीम एंगल चैनल प्रयोग शताब्दियों ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

0: अहिले बिहानको 10 बज्यो।
1: इस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: ब्रेक ब्रेक ब्रेक टाइम।

111 सम्मानित बजरंग स्टील को टीएमटी शर्ट आई बीम एंगल चैनल प्रयोग शताब्दी ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

0: अहिले अपरान्नको 4 बज्यो।
1: इस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: Wait, wait, wait, wait.

91 बाट सम्मानित बजरंग स्टील को टीएमटी शर्ट आइवन एंगल चैनल प्रयोग शताब्दी ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

0: अहिले साँझको 5 बज्यो।
1: इस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: ब्रेक ब्रेक ब्रेक टाइम।

0: अहिले साँझको 6 बज्यो।
1: इस टाइम सिक्का प्रायोजक
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
3: वेट वेट वेट

101 सम्मानित बजरंग स्टील को TNT शर्ट आई बीम एंगल चैनल प्रयोग शताब्दियों ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

101 सम्मानित बजरंग स्टील को TMT शर्ट आईबीएम एंगल चैनल प्रयोग शताब्दियों ढुक्क बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

91 बाट सम्मानित बजरंग स्टील को टीएमटी शर्ट आइवन एंगल चैनल प्रयोग शताब्दियों सम्म ढुक्क हुनुहोस् बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,